0: विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब कोई शानदार इमारत बनती है तो हम उसके कारीगर की तारीफ करते हैं, हम पत्थर ईंटें और सीमेंट की मजबूती देखते हैं, लेकिन समय का एक ऐसा थपेड़ा आता है कि वही मजबूत दीवारें मिट्टी में मिल जाती हैं और ईंटें बिखर जाती हैं। कबीर साहब आज हमारे इस शरीर रूपी मंदिर की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने वाला वह परम कारीगर अर्थात ईश्वर बड़ा अद्भुत है। उसने एक बार इसे बनाया, लेकिन जब वह मंदिर ढहता है तो वह कारीगर फिर कहीं नज़र नहीं आता। आज का दोहा हमें जीवन की लाचारी और अनोखेपन का एहसास कराएगी। आइए जानते हैं कबीर क्यों कहते हैं कि वह जयजारा दोबारा नहीं मिलता। कबीर, मंदिर ढही पड़ा ईंट भई सेम्बार, कोई जयजारा चिणी गया मिलाना दूजी बार।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर जी को। कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंगारों पर चलना होगा, युग में परिवर्तन लाने को, झंझावातों के आघातों में स्वच्छंद गीत गाने को। पराधीनता के उस दौर में अंगारों पर चलने वाले तमाम कठिनाइयों और खतरों के बावजूद बुलंद स्वर में स्वतंत्रता के गीत गाने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत भारत भूमि स्वाधीन हुई। ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई थे और दोनों ही भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून सन 1879 को नासिक के निकट भागुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और एक छोटी बहन थी मैनाबाई। बाबा राव का बचपन भागुर गांव में ही बीता। शुरुआती शिक्षा के दौर में बाबा राव का मन औपचारिक पढ़ाई से अलग हटकर धर्मयोग और जप तप में लगने लगा। वो लगातार इन विषयों को पढ़ने लगे और इन विषयों के जानकार जब पधारते तो उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उधर पिता दामोदर पंत सावरकर की देखरेख में बाबा राव ने तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी मिल गया। पिता के सानिध्य में ही उन्होंने तप और अध्ययन का गुण पाया था और उनका मन घर छोड़कर संन्यास लेने का बनने लगा था। इसी बीच प्लेग फैलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके 7 वर्ष पूर्व माँ का भी महामारी में देहांत हो चुका था। घर की परिस्थितियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा राव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई ही की, लेकिन योग और चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि होने की वजह से बाबा साहब ने स्वाध्याय किया तथा आगे चलकर उन्होंने स्वयं कई तरह की दवाइयां भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तथा वेदांत का भी गहरा अध्ययन किया। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वो न केवल अच्छा गाते थे बल्कि तबला और सितार बजाने में भी सिद्धस्थ थे। सन 1896 में गणेश दामोदर सावरकर का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम यशोदा रखा। उनकी 2 संतानें हुई, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकी। देश के हालात उन्हें परेशान करते थे और वो आजादी के लिए क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे। उसी समय सन 1899 में तात्या राव और उनके दोस्तों ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जब गणेश दामोदर सावरकर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस संगठन के लिए काम करना आरंभ कर दिया। इस तरह अटल संकल्प के साथ उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हो गया।

क्रांतिकारी दल किसी भी नए सदस्य की भर्ती से पहले उसकी मानसिक तत्परता और सर्वस्व बलिदान की इच्छा शक्ति को परखते थे, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर खरे उतरे। 1 जनवरी सन 1900 को गणेश और विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन खुले तौर पर शुरू किया, जिसका नाम था मित्र मेला। यही संगठन आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से था। इस संगठन के कार्यवाहक गणेश दामोदर सावरकर ही थे। गणेश दामोदर सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों और काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई विभूतियों को नासिक में आमंत्रित किया। इसके साथ ही गणेश दामोदर सावरकर ने संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, ताकि उससे बंदूकें, पर्चे आदि खरीदे जा सके और देश की आजादी की अलग जगी रहे। इसी बीच उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में वकालत के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। लंदन में श्यामजी से मिलकर वीर सावरकर ने इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर विदेशों से भी मदद ली। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर कविताएं, भाषण और लेख आदि लिखकर समुद्र के रास्ते भारत भेजा करते थे और गणेश दामोदर सावरकर इन्हें संपादित करके प्रकाशित करवाते थे। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन गणेश सावरकर इस कार्य में निरंतर संलग्न रहे। गणेश दामोदर सावरकर स्वयं भी एक उम्दा लेखक थे। उनके लेखन में देश प्रेम और शोध साफ देखा जा सकता था। बहुत शोध के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त ना हो जाए और आंदोलन ठप ना हो जाए, इस विचार से उन्होंने दुर्गानंद के छदम नाम से ये किताब लिखी थी। हालांकि इस बात की भनक अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जल्द लग गई, किताब बैन कर दी गई, रातों रात सारी प्रतियां दुकानों से उठा ली गईं और गणेश दामोदर सावरकर की खोजबीन का काम शुरू हो गया। उधर लंदन में रहते हुए वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर लिख चुके थे। इस तरह दोनों भाइयों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर थी, लेकिन आजादी के इन दीवानों की नजर तो भारत देश की दुर्दशा पर थी, इसीलिए वो क्रांति पथ पर निर्भय आगे बढ़ते रहे।

सन 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हारे नामक क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। नासिक षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। देश भर में इस कांड की चर्चा हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे का अभिनव भारत सोसाइटी से संबंध है। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के साथ कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे सहित 34 से अधिक लोग पकड़े गए। उधर गणेश दामोदर सावरकर देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के आरोप में सन 1909 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। चूंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए नासिक षड्यंत्र केस से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी वो ब्राइनिंग पिस्तौल थी, जो लंदन से भारत भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि 20 पिस्तौलें आई थीं। इस तरह विनायक दामोदर सावरकर का नाम सीधे तौर पर उस कांड से जोड़कर देखा जाने लगा और वो लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन से वो भारत लाए गए और मुकदमा चला। अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे का हत्याकांड में सीधा हाथ होने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जबकि हथियार उपलब्ध कराने के जुर्म में वीर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 8 अप्रैल सन 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई और वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थीं। जेल में क्रांतिकारियों से कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था। कोल्हों में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। साथ ही जेल के बाहर लगे हुए जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर बैंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। ऐसे कठिन हालात में अंडमान की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर दिन काट रहे थे। गणेश दामोदर सावरकर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। आजीवन कारावास की सजा देकर इसी जेल में उन्हें भेज दिया गया था, किंतु दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। गणेश दामोदर सावरकर सन 1921 में वहां से भारत लाए गए। वो एक वर्ष साबरमती जेल में बंद रहे और सन 1922 में रिहा हो गए। उनका स्वास्थ्य जेल यातना के कारण बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ जलाए रखी। उनका लेखन और प्रकाशन का काम जारी रहा। अब वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आ गए, जिन्होंने देश को एक राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण पहल की। सन 1925 में गणेश दामोदर सावरकर के लेख राष्ट्र मीमांसा ने इसे और बल दे दिया। निरंतर राष्ट्र सेवा में रहते हुए गणेश दामोदर सावरकर ने 16 मार्च सन 1945 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

वर्धा आश्रम में जब विनोबा रहते थे तब उनका स्वरूप किसी लापरवाह फकीर के जैसा था। आश्रम में कौन आता है कौन जाता है इसकी उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं थी। वे अपने अध्ययन में सदा व्यस्त रहते थे। पापू के आश्रम में कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आता तो वे उसे विनोबा के पास भेज देते। बापू खुद जिसके पास भेजते हैं उस व्यक्ति में कुछ महानता होनी चाहिए ऐसा सबको पहले लगता, परंतु उस व्यक्ति से मिलने पर सबको चित्र विचित्र अनुभव आते। कोई मिलने जाता तो विनोबा या तो पढ़ते रहते या कोई काम करते रहते।

0: भाई कैसे आना हुआ?
1: बाबा, आपके दर्शन के लिए आया हूं।
2: आपके दर्शन के लिए आया, ये जवाब मिलते ही विनोबा चुपचाप अपने काम में लगे रहते। मुलाकाती चिढ़कर बापू के पास लौटते और कहते कि
1: बापू, आपने कैसे असभ्य मनुष्य के पास हमें भेज दिया? उसको तो बात करने की भी फुर्सत नहीं।
3: आपने उनसे शायद कहा होगा आप दर्शन के लिए गए हैं। फिर वह तो साधक मनुष्य है, दर्शनार्थी के साथ वह बात कैसे करता?

0: भूदान यात्रा के सिलसिले में दक्षिण में कुमारप्पा जी के गांव में जाना हुआ। कुमारप्पा जी खूब हंसाते थे। विनोबा की पहली मुलाकात याद दिलाकर उन्होंने सबको बहुत हंसाया। कहते थे,
1: मैं सेवाग्राम गया था तो वापस लौटते समय बापू से विदा लेने गया। बापू ने विनोबा से मिलकर जाने को कहा। मुझे विनोबा से कुछ काम नहीं था, परंतु बापू ने खास तौर से कहा तो वह कोई विशेष व्यक्ति होगा, यह मानकर मैं उनसे मिलने गया। उस वक्त वे पढ़ रहे थे, मैं उनके सामने जाकर बैठ गया। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मुझे लगा कि अभी अपना मुंह ऊंचा करेंगे, अभी कुछ बात करेंगे, परंतु विनोबा तो अपने किताब में मुंह गड़ाए बैठे ही रहे। आखिर पौन घंटा बैठकर गुस्से से भरकर मैं बापू के पास पहुंच गया। कैसे जंगली मनुष्य के पास आपने मुझे भेज दिया? बात करने की भी सभ्यता उसने नहीं दिखाई।
2: विनोबा, तुमसे मिलने कोई आया था?
3: मेरा ध्यान था कि कोई आकर बैठा है, परंतु उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, तो मैंने अपना समय नष्ट ना करते हुए पढ़ना जारी रखा, क्योंकि मुझे खुद होकर उनसे कुछ पूछना था नहीं।
0: ऐसे थे आश्रमी विनोबा, जिन्हें जंगली से सभ्य बापू ने बनाया, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। बापू के जीवन में भी आध्यात्मिक गुण अनुभूति होती थी, ऐसी उनकी आत्मकथा पढ़ने पर पता चलता है। ऐसी ही एक आत्मानुभूति का प्रसंग विनोबा जी बताते हुए कहते हैं,
3: जब तक बापू के मन की आध्यात्मिक शंकाओं का निरसन नहीं होता था, वे काम में नहीं लगते थे। वे कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है, तो लोग उस पर से मानते थे कि यह वैज्ञानिक बात है, परंतु सब मानते हैं वैसी वह सिर्फ वैज्ञानिक बात नहीं थी। मैंने इसके बारे में उनसे चर्चा की थी, खान अब्दुल गफ्फार खां की मदद में जाने की बात की थी, तो उनको लगा कि शायद वापस लौटना ना हो, इसी से उन्होंने मुझे बातें करने के लिए बुलाया था। ज्यादातर खुद होकर मैं उनके पास बहुत नहीं जाता था। लगभग 15 दिन तक हमारी बातें चली। पहले 2-3 दिन तो वे सवाल पूछते गए और मैं जवाब देता गया, लेकिन एक दिन मैंने ही उनके ईश्वर के बारे में अनुभव पूछते हुए कहा, सत्य ही ईश्वर है ऐसा आप कहते हैं, सो तो ठीक है, परंतु उपवास के वक्त आपने कहा था कि आपको अंदर से आवाज सुनाई दी, वह क्या बात है? उसमें कोई रहस्य गूढ़ता है?
2: हाँ, उसमें कुछ ऐसा है तो सही, वह बिल्कुल ही साधारण बात नहीं है। मुझे आवाज साफ साफ सुनाई दी थी, जैसे मनुष्य बोलता है और हम सुनते हैं। मैंने पूछा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने जवाब दिया, उपवास करने चाहिए। मैंने पूछा कितने उपवास करने चाहिए, उसने कहा 21।
3: मतलब इसमें पूछने वाला एक था और दूसरा जवाब देने वाला था, यानी बिल्कुल कृष्ण अर्जुन संवाद ही था। बापू तो सत्यवादी थे, इसलिए यह कोई भ्रम तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि साक्षात ईश्वर ने मुझे यह बात कही, इसलिए फिर मैंने पूछा, ईश्वर का कोई रूप हो सकता है?
2: रूप तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे आवाज सुनाई पड़ी थी।
3: रूप अनित्य है तो आवाज भी अनित्य है, आवाज सुनाई दे तो रूप क्यों ना दिखाई दे? फिर मैंने उन्हें दूसरे लोगों के ऐसे गूढ़ानुभव की बातें बताई, मेरे अपने भी कुछ अनुभव कहे, ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होता है इसके बारे में भी बातचीत की। फिर मैंने कहा, आपके मन में जो सवाल जवाब हुए उनका संबंध तो ईश्वर के ही साथ है ना?
2: हाँ, उसके साथ संबंध है। मैंने आवाज तो सुनी परंतु दर्शन नहीं हुए, मैंने रूप नहीं देखा। रूप है ऐसा अनुभव भी मुझे नहीं हुआ, ऐसा साक्षात दर्शन मुझे नहीं हुआ, परंतु हो सकता है।

विनोबा जी के जीवन में भी ऐसी गूढ़ अनुभूति होती रहती है, परंतु वे मानते हैं कि उसको ज्यादा महत्व देने से बहुत दफा अच्छी वस्तु के मोह में उससे बेहतर वस्तु छूट जाती है, इसलिए उस वस्तु को अपने ही स्थान में रखकर उसमें से भी बाहर निकल जाना चाहिए। आखिर में तो चित्त की संतुलित स्थिति, स्थित प्रज्ञावस्था ही आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। चित्त शुद्धि

0: विनोबा ने मीरा भट्ट बहन से कहा,
1: मराठी गीता प्रवचन लाकर रोज थोड़ा थोड़ा मेरे पास बैठो। हिंदी तो तुमने सीख ली, अब मराठी भी सीख लो। मेरे आध्यात्मिक विषयों की किताबें मूल मराठी में लिखी गई हैं। गुरु के विचार अच्छी तरह से आत्मसात करने हों तो उनकी भाषा भी सीख लेनी चाहिए। यह सन 1916 की बात है, जब मैं बापू के पास गया तब मेरे ध्यान में आया कि बापू को हिंदी ठीक ठीक आती नहीं है। उसी वक्त मैंने तय किया कि गुजराती सीख लूँगा और तीसरी मुलाकात में तो मैंने उनके साथ गुजराती में ही बात की। तब से जब कभी उनसे मुलाकात होती उनके साथ गुजराती में ही बोलता।

0: और आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत दफा बाबा कहते हैं कि मेरे लिए गुजराती गुरुमुखी है, क्योंकि मैंने वो गुरुमुख से सुनी है। यात्रा में कभी कोई गुजराती व्यक्ति पहुंचता तो कहते, प्रत्येक गुजराती के चेहरे पे मुझे बापू का दर्शन हो जाता है। गुजरात यात्रा तो उनकी तीर्थ यात्रा ही थी। गुजरात में दाखिल होते ही उन्होंने कहा था कि
1: महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, परंतु गुजरात मेरी द्विज जन्मभूमि है। यहाँ मैं वास्तव में द्विज बना, मुझे यहाँ ज्ञान मिला। टाटा नगर के गुजराती व्यापारियों के समक्ष अधिकार पूर्वक मैं जाहिर करता हूं कि आप सबकी संपत्ति तो मेरे बाप की मिल्कियत है, उस पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है, परंतु अभी तो मैं सिर्फ छठे हिस्से की बात करता हूं, इसलिए आप लोगों से भी संपत्ति दान में छठा हिस्सा ही मांगूंगा।
0: दक्षिण में तमिलनाडु प्रदेश की भूदान पदयात्रा के वे दिन थे। मीराबेन अपने कमरे में बैठकर लिख रही थी कि बाबा का बुलावा आया। मीराबेन लगभग दौड़ती हुई उनके पास पहुंची तो देखा कि उनके हाथ में कोई पुस्तक है और वे उस पर कुछ लिख रहे हैं। लिखकर उन्होंने वो पुस्तक मीराबेन के हाथ में दे दी। वो पुस्तक थी गांधी जी नू गीता शिक्षण, श्री नरहरि भाई पारिख द्वारा संपादित पुस्तक थी। जब मीराबेन पुस्तक के पन्ने पलटने लगी तो बाबा बोले, तुम इसे पढ़ जाओ, जो समझ में ना आए वो पूछो। ये कहकर वो पुस्तक फिर हाथ में ले ली और एक पन्ना खोलकर एक पंक्ति दिखाकर कहा, यहां से पढ़ो। लिखा था, सुबह की बेला में सूर्य नारायण अपना उद्धार करते हैं, योगारूढ़ होकर आते हैं और संध्या के समय शांत होते हैं। सूर्य सचमुच में शांत होता है? मैं मरूंगा तब मैं भी थोड़े ही शांत होने वाला हूं। पढ़कर सिर उठाया तो देखते क्या, विनोबा जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर धीमी आवाज में कहने लगे,
1: कितना गहन वाक्य है, तुम समझी कुछ? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब अपने प्रयत्न से उद्धार करना चाहता है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है और आखिर में वह योगारूढ़ हो जाता है, योग पर उसका काबू आ जाता है और तब वह शांत हो जाता है। परंतु इसलिए वह निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि उसकी शांति अधिक सक्रिय होती है। मृत्यु के बाद वह व्यक्ति अधिक

असरकारक कार्य कर सकता है, क्योंकि उसकी देह के साथ चिपके दोष उस देह के मिटने के साथ भस्मीभूत हो जाते हैं। बापू को लेकर सब महानुभाव जो अपनी देह छोड़कर गए, उन सब के बारे में मैं इस सत्य की अनुभूति कर रहा हूँ। वे देह में रहते हुए जितना काम करते थे, उससे आज वे अधिक काम कर रहे हैं।

0: तो साधारण रात्री 10 सुमार असेल. सरपंचांच्या नातवाबरोबर आम्ही जीपनी शेतावर चाललो होतो.
1: कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब कोई शानदार इमारत बनती है तो हम उसके कारीगर की तारीफ करते हैं, हम पत्थर ईंटें और सीमेंट की मजबूती देखते हैं, लेकिन समय का एक ऐसा थपेड़ा आता है कि वही मजबूत दीवारें मिट्टी में मिल जाती हैं और ईंटें बिखर जाती हैं। कबीर साहब आज हमारे इस शरीर रूपी मंदिर की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने वाला वह परम कारीगर अर्थात ईश्वर बड़ा अद्भुत है। उसने एक बार इसे बनाया, लेकिन जब वह मंदिर ढहता है तो वह कारीगर फिर कहीं नजर नहीं आता। आज का दोहा हमें जीवन की लाचारी और अनोखेपन का एहसास कराएगी। आइए जानते हैं कबीर क्यों कहते हैं कि वह चेजारा दोबारा नहीं मिलता। कबीर, मंदिर ढही पड़ा ईंट भई सेमबार, कोई चेजारा चिणी गया, मिलिया ना दूजी बार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर मंदिर ढही पड़ा। यह जो शरीर रूपी मंदिर है, एक दिन ढह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ईंट भई सिंबार, और इसकी जो ईंटें हैं यानी हमारे अंग और तत्व, वे बिखर कर मिट्टी का ढेर अर्थात सिंबार बन जाती हैं। जैसे पुरानी इमारत गिरने के बाद सिर्फ मलबे का ढेर बचती हैं, वैसे ही यह भी अंत में मिट्टी ही रह जाती हैं। अगली पंक्ति में कबीर उस बनाने वाले की बात करते हैं, कोई चेजारा चिनी गया। चेजारा यानी राजमिस्त्री या कारीगर। कबीर कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा कारीगर था जो इस शरीर को बड़ी खूबसूरती से बना के गया। उसने हाड़ मांस के इस मंदिर को बड़ी कुशलता से खड़ा किया था। मिला न दूजी बात, पर विडंबना देखिए, वह कारीगर अब दोबारा कहीं नहीं मिलता। न वह मंदिर फिर से खड़ा होता है, न वह बनाने वाला दोबारा दिखाई देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कलाकार रेत पर एक महल बनाए और लहरों के आने के बाद वह कलाकार भी ओझल हो जाए और वह महल भी मिट जाए। कबीर समझा रहे हैं कि यह जीवन उस परम कारीगर की एक नायाब कृति है जो सिर्फ एक बार के लिए ही मिली है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा मंदिर की कीमत को समझिए। हम इसे बेकार की नफरतों, बुरे विचारों और व्यर्थ की चिंताओं से गंदा कर रहे हैं। हमें लगता है कि यह मंदिर हमेशा खड़ा रहेगा या फिर से बन जाएगा। आज कोशिश कीजिए उस कारीगर की कला का सम्मान करने की। जब तक यह मंदिर खड़ा है, इसमें शांति और प्रेम की ज्योत जलाइए। कबीर हमें याद दिला रहे हैं कि जो अवसर एक बार हाथ से निकल गया, वह दोबारा नहीं आएगा। मलबे के ढेर पर बैठकर रोने से बेहतर है कि जब तक मंदिर सुरक्षित है, उसमें उस चेजारे यानी उस परमात्मा को याद कर लिया जाए। अपनी इस अनूठी जिंदगी की कद्र कीजिए, क्योंकि यह मौका दूजी बार नहीं मिलने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: कृषी संदेश।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर जी को। कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप SMS के जरिए भी हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस जरूर भेजें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंगारों पर चलना होगा, युग में परिवर्तन लाने को, झंझावातों के आघातों में स्वच्छंद गीत गाने को। पराधीनता के उस दौर में अंगारों पर चलने वाले तमाम कठिनाइयों और खतरों के बावजूद बुलंद स्वर में स्वतंत्रता के गीत गाने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत भारत भूमि स्वाधीन हुई। ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई थे और दोनों ही भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून 1879 को नासिक के निकट भागुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और एक छोटी बहन थी मैनाबाई। बाबा राव का बचपन भागुर गांव में ही बीता। शुरुआती शिक्षा के दौर में बाबा राव का मन औपचारिक पढ़ाई से अलग हटकर धर्मयोग और जप तप में लगने लगा। वो लगातार इन विषयों को पढ़ने लगे और इन विषयों के जानकार जब पधारते तो उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उधर पिता दामोदर पंत सावरकर की देखरेख में बाबा राव ने तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी मिल गया। पिता के सानिध्य में ही उन्होंने तप और अध्ययन का गुण पाया था और उनका मन घर छोड़कर संन्यास लेने का बनने लगा था। इसी बीच प्लेग फैलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके 7 वर्ष पूर्व माँ का भी महामारी में देहांत हो चुका था। घर की परिस्थितियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा राव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई ही की, लेकिन योग और चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि होने की वजह से बाबा साहब ने स्वाध्याय किया तथा आगे चलकर उन्होंने स्वयं कई तरह की दवाइयां भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तथा वेदांत का भी गहरा अध्ययन किया। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वो न केवल अच्छा गाते थे बल्कि तबला और सितार बजाने में भी सिद्धस्थ थे। सन 1896 में गणेश दामोदर सावरकर का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम यशोदा रखा। उनकी 2 संतानें हुई, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकी। देश के हालात उन्हें परेशान करते थे और वो आजादी के लिए क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे। उसी समय सन 1899 में तात्या राव और उनके दोस्तों ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जब गणेश दामोदर सावरकर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस संगठन के लिए काम करना आरंभ कर दिया। इस तरह अटल संकल्प के साथ उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हो गया।

क्रांतिकारी दल किसी भी नए सदस्य की भर्ती से पहले उसकी मानसिक तत्परता और सर्वस्व बलिदान की इच्छा शक्ति को परखते थे, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर खरे उतरे। 1 जनवरी सन 1900 को गणेश और विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन खुले तौर पर शुरू किया, जिसका नाम था मित्र मेला। यही संगठन आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से था। इस संगठन के कार्यवाहक गणेश दामोदर सावरकर ही थे। गणेश दामोदर सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों और काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई विभूतियों को नासिक में आमंत्रित किया। इसके साथ ही गणेश दामोदर सावरकर ने संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, ताकि उससे बंदूकें, पर्चे आदि खरीदे जा सके और देश की आजादी की अलग जगी रहे। इसी बीच उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में वकालत के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। लंदन में श्यामजी से मिलकर वीर सावरकर ने इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर विदेशों से भी मदद ली। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर कविताएं, भाषण और लेख आदि लिखकर समुद्र के रास्ते भारत भेजा करते थे और गणेश दामोदर सावरकर इन्हें संपादित करके प्रकाशित करवाते थे। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन गणेश सावरकर इस कार्य में निरंतर संलग्न रहे। गणेश दामोदर सावरकर स्वयं भी एक उम्दा लेखक थे। उनके लेखन में देश प्रेम और शोध साफ देखा जा सकता था। बहुत शोध के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त ना हो जाए और आंदोलन ठप ना हो जाए, इस विचार से उन्होंने दुर्गानंद के छदम नाम से ये किताब लिखी थी। हालांकि इस बात की भनक अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जल्द लग गई, किताब बैन कर दी गई, रातों रात सारी प्रतियां दुकानों से उठा ली गईं और गणेश दामोदर सावरकर की खोजबीन का काम शुरू हो गया। उधर लंदन में रहते हुए वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर लिख चुके थे। इस तरह दोनों भाइयों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर थी, लेकिन आजादी के इन दीवानों की नजर तो भारत देश की दुर्दशा पर थी, इसीलिए वो क्रांति पथ पर निर्भय आगे बढ़ते रहे।

सन 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हारे नामक क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। नासिक षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। देश भर में इस कांड की चर्चा हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे का अभिनव भारत सोसाइटी से संबंध है। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के साथ कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे सहित 34 से अधिक लोग पकड़े गए। उधर गणेश दामोदर सावरकर देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के आरोप में सन 1909 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। चूंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए नासिक षड्यंत्र केस से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी वो ब्राइनिंग पिस्तौल थी, जो लंदन से भारत भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि 20 पिस्तौलें आई थीं। इस तरह विनायक दामोदर सावरकर का नाम सीधे तौर पर

कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 8 अप्रैल सन 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई और वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थीं। जेल में क्रांतिकारियों से कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था। कोल्हों में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। साथ ही जेल के बाहर लगे हुए जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर बैंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। ऐसे कठिन हालात में अंडमान की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर दिन काट रहे थे। गणेश दामोदर सावरकर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। आजीवन कारावास की सजा देकर इसी जेल में उन्हें भेज दिया गया था, किंतु दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। गणेश दामोदर सावरकर सन 1921 में वहां से भारत लाए गए। वो एक वर्ष साबरमती जेल में बंद रहे और सन 1922 में रिहा हो गए। उनका स्वास्थ्य जेल यातना के कारण बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ जलाए रखी। उनका लेखन और प्रकाशन का काम जारी रहा। अब वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आ गए, जिन्होंने देश को एक राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण पहल की। सन 1925 में गणेश दामोदर सावरकर के लेख राष्ट्र मीमांसा ने इसे और बल दे दिया। निरंतर राष्ट्र सेवा में रहते हुए गणेश दामोदर सावरकर ने 16 मार्च सन 1945 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

वर्धा आश्रम में जब विनोबा रहते थे तब उनका स्वरूप किसी लापरवाह फकीर के जैसा था। आश्रम में कौन आता है कौन जाता है इसकी उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं थी। वे अपने अध्ययन में सदा व्यस्त रहते थे। पापू के आश्रम में कोई भी विशिष्ट व्यक्ति आता तो वे उसे विनोबा के पास भेज देते। बापू खुद जिसके पास भेजते हैं उस व्यक्ति में कुछ महानता होनी चाहिए ऐसा सबको पहले लगता, परंतु उस व्यक्ति से मिलने पर सबको चित्र विचित्र अनुभव आते। कोई मिलने जाता तो विनोबा या तो पढ़ते रहते या कोई काम करते रहते।

0: भाई कैसे आना हुआ?
1: बाबा आपके दर्शन के लिए आया हूं।
2: आपके दर्शन के लिए आया, ये जवाब मिलते ही विनोबा चुपचाप अपने काम में लगे रहते। मुलाकाती चिढ़कर बापू के पास लौटते और कहते कि
1: बापू, आपने कैसे असभ्य मनुष्य के पास हमें भेज दिया? उसको तो बात करने की भी फुर्सत नहीं।
3: आपने उनसे शायद कहा होगा आप दर्शन के लिए गए हैं। फिर वह तो साधक मनुष्य है, दर्शनार्थी के साथ वह बात कैसे करता?

0: भूदान यात्रा के सिलसिले में दक्षिण में कुमारप्पा जी के गांव में जाना हुआ। कुमारप्पा जी खूब हंसाते थे। विनोबा की पहली मुलाकात याद दिलाकर उन्होंने सबको बहुत हंसाया। कहते थे,
1: मैं सेवाग्राम गया था तो वापस लौटते समय बापू से विदा लेने गया। बापू ने विनोबा से मिलकर जाने को कहा। मुझे विनोबा से कुछ काम नहीं था, परंतु बापू ने खास तौर से कहा तो वह कोई विशेष व्यक्ति होगा, यह मानकर मैं उनसे मिलने गया। उस वक्त वे पढ़ रहे थे, मैं उनके सामने जाकर बैठ गया। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मुझे लगा कि अभी अपना मुंह ऊंचा करेंगे, अभी कुछ बात करेंगे, परंतु विनोबा तो अपने किताब में मुंह गड़ाए बैठे ही रहे। आखिर 1.25 घंटा बैठकर गुस्से से भरकर मैं बापू के पास पहुंच गया। कैसे जंगली मनुष्य के पास आपने मुझे भेज दिया? बात करने की भी सभ्यता उसने नहीं दिखाई।
2: विनोबा, तुमसे मिलने कोई आया था?
3: मेरा ध्यान था कि कोई आकर बैठा है, परंतु उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, तो मैंने अपना समय नष्ट ना करते हुए पढ़ना जारी रखा, क्योंकि मुझे खुद होकर उनसे कुछ पूछना था नहीं।
0: ऐसे थे आश्रमी विनोबा, जिन्हें जंगली से सभ्य बापू ने बनाया, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। बापू के जीवन में भी आध्यात्मिक गुढ़ अनुभूति होती थी, ऐसी उनकी आत्मकथा पढ़ने पर पता चलता है। ऐसी ही एक आत्मानुभूति का प्रसंग विनोबा जी बताते हुए कहते हैं,
3: जब तक बापू के मन की आध्यात्मिक शंकाओं का निरसन नहीं होता था, वे काम में नहीं लगते थे। वे कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है, तो लोग उस पर से मानते थे कि यह वैज्ञानिक बात है, परंतु सब मानते हैं वैसी वह सिर्फ वैज्ञानिक बात नहीं थी। मैंने इसके बारे में उनसे चर्चा की थी, खान अब्दुल गफ्फार खां की मदद में जाने की बात की थी, तो उनको लगा कि शायद वापस लौटना ना हो, इसी से उन्होंने मुझे बातें करने के लिए बुलाया था। ज्यादातर खुद होकर मैं उनके पास बहुत नहीं जाता था। लगभग 15 दिन तक हमारी बातें चली। पहले 2-3 दिन तो वे सवाल पूछते गए और मैं जवाब देता गया, लेकिन एक दिन मैंने ही उनके ईश्वर के बारे में अनुभव पूछते हुए कहा, सत्य ही ईश्वर है ऐसा आप कहते हैं, सो तो ठीक है, परंतु उपवास के वक्त आपने कहा था कि आपको अंदर से आवाज सुनाई दी, वह क्या बात है? उसमें कोई रहस्य गूढ़ता है?
2: हाँ, उसमें कुछ ऐसा है तो सही, वह बिल्कुल ही साधारण बात नहीं है। मुझे आवाज साफ साफ सुनाई दी थी, जैसे मनुष्य बोलता है और हम सुनते हैं। मैंने पूछा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने जवाब दिया, उपवास करने चाहिए। मैंने पूछा कितने उपवास करने चाहिए, उसने कहा 21।
3: मतलब इसमें पूछने वाला एक था और दूसरा जवाब देने वाला था, यानी बिल्कुल कृष्ण अर्जुन संवाद ही था। बापू तो सत्यवादी थे, इसलिए यह कोई भ्रम तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि साक्षात ईश्वर ने मुझे यह बात कही, इसलिए फिर मैंने पूछा, ईश्वर का कोई रूप हो सकता है?
2: रूप तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे आवाज सुनाई पड़ी थी।
3: रूप अनित्य है तो आवाज भी अनित्य है, आवाज सुनाई दे तो रूप क्यों ना दिखाई दे? फिर मैंने उन्हें दूसरे लोगों के ऐसे गूढ़ानुभव की बातें बताई, मेरे अपने भी कुछ अनुभव कहे, ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होता है इसके बारे में भी बातचीत की। फिर मैंने कहा, आपके मन में जो सवाल जवाब हुए उनका संबंध तो ईश्वर के ही साथ है ना?
2: हाँ, उसके साथ संबंध है। मैंने आवाज तो सुनी परंतु दर्शन नहीं हुए, मैंने रूप नहीं देखा। रूप है ऐसा अनुभव भी मुझे नहीं हुआ, ऐसा साक्षात दर्शन मुझे नहीं हुआ, परंतु हो सकता है।

0: विनोबा जी के जीवन में भी ऐसी गुड़ अनुभूति होती रहती है, परंतु वे मानते हैं कि उसको ज्यादा महत्व देने से बहुत दफा अच्छी वस्तु के मोह में उससे बेहतर वस्तु छूट जाती है, इसलिए उस वस्तु को अपने ही स्थान में रखकर उसमें से भी बाहर निकल जाना चाहिए। आखिर में तो चित्त की संतुलित स्थिति, स्थित प्रज्ञावस्था ही आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। चित्त शुद्धि में से सहज परिवर्तन हुआ हो, ऐसी सिद्धि होनी चाहिए जिसमें सिद्धि प्राप्त की न गई हो, वो सहज आ मिली हो, वही सच्ची दिशा है। तमिलनाडु की यात्रा की बात है, रोज हिंदी में ही बातचीत, श्रवण, लेखादि होने के कारण हिंदी सहज भाषा हो गई थी। एक दिन विनोबा ने मीरा भट्ट बहन से कहा,
1: मराठी गीता प्रवचन लाकर रोज थोड़ा थोड़ा मेरे पास बैठो, हिंदी तो तुमने सीख ली, अब मराठी भी सीख लो। मेरे आध्यात्मिक विषयों की किताबें मूल मराठी में लिखी गई हैं। गुरु के विचार अच्छी तरह से आत्मसात करने हों तो उनकी भाषा भी सीख लेनी चाहिए। यह सन 1916 की बात है, जब मैं बापू के पास गया तब मेरे ध्यान में आया कि बापू को हिंदी ठीक ठीक आती नहीं है। उसी वक्त मैंने तय किया कि गुजराती सीख लूंगा और तीसरी मुलाकात में तो मैंने उनके साथ गुजराती में ही बात की। तब से जब कभी उनसे मुलाकात होती उनके साथ गुजराती में ही बोलता।

0: और आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत दफा बाबा कहते हैं कि मेरे लिए गुजराती गुरुमुखी है, क्योंकि मैंने वो गुरुमुख से सुनी है। यात्रा में कभी कोई गुजराती व्यक्ति पहुंचता तो कहते, प्रत्येक गुजराती के चेहरे पे मुझे बापू का दर्शन हो जाता है। गुजरात यात्रा तो उनकी तीर्थ यात्रा ही थी। गुजरात में दाखिल होते ही उन्होंने कहा था कि
1: महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, परंतु गुजरात मेरी द्वि जन्मभूमि है। यहाँ मैं वास्तव में द्विज बना, मुझे यहाँ ज्ञान मिला। टाटा नगर के गुजराती व्यापारियों के समक्ष अधिकार पूर्वक मैं जाहिर करता हूं कि आप सबकी संपत्ति तो मेरे बाप की मिल्कियत है, उस पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है, परंतु अभी तो मैं सिर्फ छठे हिस्से की बात करता हूं, इसलिए आप लोगों से भी संपत्ति दान में छठा हिस्सा ही मांगूंगा।
0: दक्षिण में तमिलनाडु प्रदेश की भूदान पदयात्रा के वे दिन थे। मीराबेन अपने कमरे में बैठकर लिख रही थी कि बाबा का बुलावा आया। मीराबेन लगभग दौड़ती हुई उनके पास पहुंची तो देखा कि उनके हाथ में कोई पुस्तक है और वे उस पर कुछ लिख रहे हैं। लिखकर उन्होंने वो पुस्तक मीराबेन के हाथ में दे दी। वो पुस्तक थी गांधी जी नू गीता शिक्षण, श्री नरहरि भाई पारिख द्वारा संपादित पुस्तक थी। जब मीराबेन पुस्तक के पन्ने पलटने लगी तो बाबा बोले, तुम इसे पढ़ जाओ, जो समझ में न आए वो पूछो। ये कहकर वो पुस्तक फिर हाथ में ले ली और एक पन्ना खोलकर एक पंक्ति दिखाकर कहा, यहां से पढ़ो। लिखा था, सुबह की बेला में सूर्य नारायण अपना उद्धार करते हैं, योगारूढ़ होकर आते हैं और संध्या के समय शांत होते हैं। सूर्य सचमुच में शांत होता है? मैं मरूंगा तब मैं भी थोड़े ही शांत होने वाला हूं। पढ़कर सिर उठाया तो देखते क्या, विनोबा जी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर धीमी आवाज में कहने लगे,
1: कितना गहन वाक्य है, तुम समझी कुछ? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब अपने प्रयत्न से उद्धार करना चाहता है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है और आखिर में वह योगारूढ़ हो जाता है, योग पर उसका काबू आ जाता है और तब वह शांत हो जाता है। परंतु इसलिए वह निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि उसकी शांति अधिक सक्रिय होती है। मृत्यु के बाद वह व्यक्ति अधिक असरकारक कार्य कर सकता है, क्योंकि उसकी देह के साथ चिपके दोष उस देह के मिटने के साथ भस्मीभूत हो जाते हैं। बापू को लेकर सब महानुभाव जो अपनी देह छोड़कर गए, उन सब के बारे में मैं इस सत्य की अनुभूति कर रहा हूं। वे देह में रहते हुए जितना काम करते थे उससे आज वे अधिक काम कर रहे हैं।